एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026 सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है।

0: FMX 104 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर का नाम सुखों की खान है। भगवान का नाम लेने से हमें किसी काम या किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना पड़ता। यदि हम अपनी दिनचर्या के साथ साथ परमात्मा का नाम जपते रहें तो भी हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं।

यदि हम भगवान का दर्श और दीदार करना चाहते हैं तो हमें राम नाम का निरंतर जाप करना चाहिए। राम नाम के जाप से आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही मन में छिपे सभी बुरे विचारों का भी नाश होता है।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता हैं सतीश भाटिया। स्वर दिया है ए हरि हरन ने।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी। यमुना गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति चार दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता थे सतीश भाटिया, स्वर दिया था ए हरिहरन ने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, विक्रम संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, तदनुसार 29 मई 2026। अब एक नज़र टुडेज अपडेट्स पर।

नॉर्वे चेस 2026 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंद भारत की सबसे कम उम्र के सफल ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया। ये पुरस्कार पाने वाला सिक्किम उत्तर पूर्वी क्षेत्र का तीसरा और देश का 15वां राज्य बन गया है। ये पुरस्कार किसी भी सैन्य या फिर पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत का पहला सुपर प्रेशर बैलून 2026 आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। ये बैलून टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। तो ये थी कुछ एक टुडेज अपडेट्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब जानिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 7:40 पर। कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:30 पर। नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। ये कार्यक्रम सजीव फॉरेन कार्यक्रम होता है और इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन

0: संगीत के आकर्षण में सुबह 7:50 पर आनंद लीजिएगा हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा के अंतर्गत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि पेश करेंगे सुबह 9:30 पर। गाने नए पुराने इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। जय जवान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता पेश करेंगे शाम 7:45 पर। और चांदनी रातें कार्यक्रम जो कि आपकी पसंद पर आधारित होता है इसे हम सुनवाएंगे, इसे हम लेकर आएंगे रात्रि 10:00। विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे सुबह 9:45 से 10:00 तक, फिर सुबह 11:00 से शाम 5:00 तक और रात्रि 9:15 से रात्रि 10:00 तक। तो ये थी आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
0: और अब आनंद लीजिएगा इस गीत का।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे इस गीत का। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मंचस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40,30,00,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणां उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनी ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमा रक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमा रक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय BDT अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 30,00,000 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु। IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "Their dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sporting facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics." The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. National Security Advisor Ajit Dobhal called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Dobhal said, "Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action."
5: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
4: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Dobhal participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costly fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has said it targeted an American airbase in the region after fresh U.S. strikes on southern Iran overnight. Kuwait, which hosts a U.S. base, said it had intercepted hostile missile and drone threats, but did not confirm the target. In IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in qualifier 2 at New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे

0: में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवर उसे आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं

0: से चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर वन और यह है नंबर टू।
1: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
2: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
2: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
2: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में

0: दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने

0: कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: के बर्तनों में सिसकी लेता बचपन, घुट घुट कर थक थक कर सांस लेता बचपन, कोमल से कंधों पर बोझ जैसा बचपन, सहमा डरा सा हारा सा बचपन, झाड़ू और पोचे में बेसहारा बचपन। बचपन को सहेजना है, सहमने से बचाना है, हमने तो हर बच्चे को पढ़ने में लगाना है। छोटू रामू

0: लौटाना है, बाल श्रम को हमने जड़ से मिटाना है, देश के हर बच्चे को बचपन लौटाना है, बाल श्रम को हमने जड़ से मिटाना है, बाल श्रम को हमने जड़ से मिटाना है।
1: अपने बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजें, बाल श्रम रोकें।
2: हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में आज सुनिए गांधी जी के विचार, बापू का प्रिय भजन और रामधुन।
1: महात्मा गांधी अपनी सर्वोदय विचारधारा का क्रांतिकारी संदेश लेकर जनता के बीच आए थे। उन्होंने समाज रचना का नया स्वरूप और नई योजना हमारे सामने रखी थी। गांधी जी अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति कम काम ज्यादा दाम या सस्ता खरीदो महंगा बेचो आज के अमानवीय एकांगी रूप अपनाने वाले नहीं थे। उन्होंने मानवीय अर्थशास्त्रियों की परंपरा अपनाई है। मानव जीवन के समस्त विकास तथा उसके राजनीतिक आर्थिक नैतिक एवं व्यक्तिगत पहलू का पूर्ण ध्यान गांधी जी को था। गांधी जी का कोई भी आर्थिक सिद्धांत हवाई नहीं था। उनके सारे विचार पहले आचार से पुष्ट होकर निकले थे। गांधी जी भारतीय परंपरा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पोषक होने के साथ साथ पश्चिमी परंपरा के अर्थशास्त्रियों के भी पोषक थे। मानवीय अर्थशास्त्र के सृजन के लिए इन्होंने मानव के नैतिक सामाजिक व्यक्तिगत राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक ऐसा शास्त्र माना है जो मानव के शारीरिक और आध्यात्मिक भूख की तृप्ति करता है। इसलिए गांधी जी कल्याणवादी अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूरी नैतिक सुधार की योजना स्वयं प्रस्तुत करे, यही गांधी जी के विचार थे। कल्याणकारी समाज का लक्ष्य मानवीय अहिंसात्मक समाज की रचना करना है। मानवीय आवश्यकताओं को न्यूनतम रखकर तथा सादा जीवन उच्च विचार की भावना को गांधी जी ने सदा आगे रखा। गांधी जी समाजवादी अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र और मानवीय अर्थशास्त्र की कल्पना करने वाले अर्थशास्त्र के सुलझे हुए विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को नया मार्ग प्रदान किया। साध्य तथा साधन की पवित्रता का संदेश देकर इन्होंने समाज को शांति में ही सुख का संदेश दिया और इस तरह से अपनी विचारधारा द्वारा गांधी जी ने बेकारी शोषण दरिद्रता वितरण की विषमता प्रतिस्पर्धा तथा लिप्सा के अंत का बहुत सरल दृष्टिकोण सामने रखा। विश्व में गांधी की भांति कोई भी ऐसा अद्भुत पुरुष नहीं हुआ जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का पंडित हो। गांधी जी की समाज व्यवस्था और मानव विकास का चित्र विकेंद्रित उद्योगों आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण दोनों से मुक्ति समानता स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र से ओतप्रोत एक ऐसे जीवन की स्थापना है जिसमें मनुष्य सदाचारपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन बिता सके। गांधी जी का कहना है कि हमें जिस ओर जाना है हमारी दिशा भी उसी ओर होनी चाहिए। प्रतिकूल दिशा में चलकर कोई अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि गांधी जी नई तालीम के द्वारा जनता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था दोनों के ही लिए स्वावलंबन का अभ्यास कराकर शासन के दायरे को क्रमशः घटाना चाहते थे। इस तरीके से लाभ ये होता है कि राज्य की शक्ति क्षीण होती है तथा आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनता की स्वतंत्रता में प्रगति होती रहती है और अंत में वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। मानव की आदि आवश्यकता उसकी भौतिक आवश्यकता है जिससे वो जीवित रह सके। दूसरी आवश्यकता आध्यात्मिक आवश्यकता है और इस प्रकार मानव की समग्र उन्नति ही सर्वोदय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह श्लोक गांधी जी के दर्शन का प्राणमय मंत्र है। अहिंसा और शांति के आधार पर स्थापित वर्ग विहीन जाति विहीन शोषण विहीन तथा एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, यही सर्वोदय समाज का साध्य है। गांधी जी एक प्राणवान और निरंतर विकासशील व्यक्ति थे। उनकी सृजनात्मक प्रतिभा महान थी। उनकी तमाम सार्वजनिक राजनीतिक योजनाओं और प्रवृत्तियों में अखंड आंतरिक एकता है और उनका विकास सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन संबंधी दर्शन पर आधारित मान्यताओं से हुआ है। उनकी दृष्टि से व्यक्ति ईश्वर का अंश है और उसका प्रयास उसी दिशा में हो रहा है, इसलिए उनका लक्ष्य भौतिक नहीं किंतु आध्यात्मिक था। वे मानते थे कि व्यक्ति को अहिंसा, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक समाज में अपनी पूर्णता साधनी है। यद्यपि उनका ये मत था कि व्यक्ति की वृत्ति आध्यात्मिक होती है और समाज अमर है, फिर भी उन्होंने देखा कि व्यक्तिगत रूप में श्रम नीति, भले वो देहाती किसान हो या शहरी कारखाने का मजदूर, औद्योगिक सभ्यता और राजनीतिक बंधन के दबाव में गरीबी, रोग और मौत की चक्की में पिस रहा है। वे चाहते थे कि उत्पादक और रचनात्मक शरीर श्रम पर आधारित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आध्यात्मिकता और समाज की अमरता को पुनर्जीवित किया जाए। ये व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन का पुनर्रचना करना चाहते थे और उन्हें शिक्षा के द्वारा नए मूल्य देना चाहते थे।
0: ये थे गांधी जी के विचार। अब सुनिए बापू का प्रिय भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिएगा हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ एक भजन, लेकिन उससे पहले सुनिएगा ये कुछ एक संदेश।
1: मंगल श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
2: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का, जिसमें हरियाणवी लोकगीतों के कार्यक्रम बाजे नगाड़ा का, जिसमें हमने आपको सुनाया भजन, और इसे गाने वाली हमारी कलाकार थी विधि देसवाल। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को

पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देव राय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: टीबी की जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans an all-important qualifier too in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
7: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
6: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
8: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
6: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Keval Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. With the appointments, Mr. Naveen has begun the process of selecting a new team of office bearers in states as well as the national level. In Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will address the Legislative Assembly today. This is the first policy address of the new UDF government in Kerala after 10 years. Following the Governor's address today, the House will adjourn and reconvene on June the 1st for discussion on the motion of thanks to the Governor's address. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Keralam beginning today. The Vice President will attend the global celebration

मस्ती भरा प्यारी प्यारी बातों और विचारों से सजा दिलों को नजदीक लाता गुस्सा शांत करके दिल को खुश करने वाला कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हाजिर है आपकी रेडियो मित्र आरती। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अगर आप खुश हैं तो आपकी जिंदगी भी खुश होगी, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो ये जिंदगी आपको सलाम करती है। ये कहना है चार्ली चैपलिन का, और हमारा कहना है कि आप कभी उदास मत होना, क्योंकि ये जीवन उम्मीदों आशाओं और खुशियों से भरा है। इसीलिए जीवन में कैसे भी मोड़ आए बस सबको हंस के पार कर लीजिए।

विश्व के अनेक देश योग और योगासन को खेल के रूप में भी अपनाने लगे हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2026 में यानी इसी वर्ष पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जो कि भारत के लिए एक गर्व का विषय है। तो आइए, अब समय हो चुका है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है कि इस वर्ष आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। इस सवाल का जवाब आप हमें भेजेंगे एसएमएस के द्वारा हमारे फ़ोन नंबर 9466021336 पर 8:45 तक। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक एसएमएस में सिर्फ 3 नाम हो, सही जवाब हो और इन सभी के बीच में पर्याप्त गैप भी हो, स्पेस आप दें। जब आप एसएमएस टाइप करते हैं तो पर्याप्त स्पेस आप बीच में दें और एसएमएस सिर्फ एक ही बार भेजें, बार बार ना भेजें। तो अगर आप जानते हैं आज के सवाल का जवाब तो जल्दी से भेज दीजिए, कर दीजिए एसएमएस, क्योंकि हम कर रहे हैं इंतज़ार और आपके लिए लाए हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दोस्तों, हम सब ख्वाब देखते हैं, फिर चाहे हमारी आंखें खुली हों या बंद, और ऐसे में अक्सर हम सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास ये भी होता, वो भी होता, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मेरे पास होती, बड़ा सा घर हो, और भी न जाने क्या क्या हम पाने की सोचने लगते हैं। और फिर अगर हम हमारे पास वो सब ना हो, यानी हमें वो सब ना मिल पाए, तो हम मायूस होने लगते हैं, ज़िंदगी को उदास करने लगते हैं, अपने आप से ही लड़ने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अपने आप को संभालने का बस एक ही तरीका है कि आप किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके पास शायद आपके बराबर की भी सुख सुविधाएँ ना हों। ठीक वैसे ही जैसे महान अंग्रेज़ी कवि विलियम शेक्सपियर ने किया था। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर ने भी एक बार उनके पास जूते ना होने की वजह से खूब मतलब अपने आप पर बहुत गुस्सा किया, वो खूब रोए, और लेकिन उसी वक्त अचानक से उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पास टांगे भी नहीं थी, और उसे देखते ही उनका मन शांत हो गया। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, दुआओं से भरी है, इसीलिए इसे मुस्कुरा कर जिए। जो भी आपके पास है उसमें खुश रहो, ज़्यादा के बारे में ज़रूर सोचें, उसे पाने की कोशिश भी करें, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा पाने की लालसा आपके जीवन की घुटन ना बन जाए। उम्मीद है आप हमारी बात पर गौर ज़रूर करेंगे और इस प्यारे से गीत का आनंद भी लेंगे।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: दोस्तों, आज हमने जो आपसे सवाल किया था, उस सवाल के जो जवाब वाले SMS यानी कि आप सबने हमें उस सवाल का जवाब भेजा है, तो हम क्यों ना अभी आपके नाम शामिल कर लें और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है और सही जवाब है वो आपको बाद में बता दिया जाए, है ना। तो चलिए हम अब आपके नाम शामिल करने जा रहे हैं जिन्होंने दिया है सही जवाब। तो एक तो हमारे पास जवाब आया है कोलकाता, ये जवाब गलत है। तो जिन्होंने भी ये जवाब भेजा है उनका नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाला, सही जवाब वाला नाम ही हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले सही जवाब हमारे पास आया है ललिता सिंह और भगवान सिंह का, जो कि शिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं। नाहन हिमाचल प्रदेश से हैं योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर। और फिर है जी, देखिए दोस्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपको SMS सिर्फ एक ही बार करना है, तो आप एक ही बार किया कीजिए, बार बार SMS नहीं करना होता। और अब हम नाम शामिल करने जा रहे हैं, योगी मोहल्ला बराड़ा अम्बाला से हैं, रवि कुमार राहुल रंजीत कौर और गुरुशब्द सिंह राहुल। टिया कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से, विक्रम योग भारती संध्या सैनी हरमन योग भारती हैं फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से, मोटला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर और रतन माला, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा, ढाणी कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना अनाया और ओजस अवाना, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजनन येले नवदीप येले विश्वदीप येले, आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा चंद्रवंशी, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, उच्च भट्टी छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले। दोस्तों, क्या आपने दोबारा SMS किया है? अगर देखते हैं, जी हाँ, आप अलग अलग नंबर से मैसेजेस कर रहे हैं तो ये गलत है। सेम नाम है तो आप एक ही नंबर से एक ही बार SMS कीजिए। तराईमाल रायगढ़ से हैं अंशु साहू और निशु साहू, कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले सुजाता हिवराले प्रतीक हिवराले, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान आयशा सबिया अनस रेहान, रामनगर कैथल से हैं सुनील दत्त विनायक दत्त और आशा रानी, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा, भाणा ब्राह्मणावाला नरवाना से हैं मेघराज शर्मा, फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन हियांश कुमार चंदन है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से, शाहदरा दिल्ली से है तुलसी मस्किन चैतन्य मस्किन मेघा आशीष राजा। फिर है जी हीरा वली फजिल का पंजाब से, सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु और इनके साथी, मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप राजपाल पंकज, राजाजी नगर बेंगलोर से हैं NR प्रसाद अखिला प्रसाद, नागर कोहरा से हैं बबलू साहू जामुन देवी साहू और आराध्य साहू, नल्लेश्वर महाराष्ट्र से हैं PS नहामकर निर्मला नहामकर और विशाल नहामकर, किशोर की नगरी खंडवा से हैं DP सैनी गौरव सैनी, रश्मि झरना है राजकोट गुजरात से, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय और अमित कुमार राय, भीमखोज तरपोंगी सिंह हैं, संतोष गुप्ता हितेश गुप्ता, माघीराम सैनी पूनम सैनी हैं कुरुक्षेत्र से, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा कांबड़े, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा निमित दिशानी, कासगंज उत्तर प्रदेश से असलम सैफी जाहिद सैफी आबाद खान, नरेश मल्होत्रा नीटू भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया, यह है खैल बाजार पानीपत से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर और हसनैन पंवार, उगाला अम्बाला से हैं राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये फिर से नाम आ गया है, तो ऐसा ना करें दोस्तों, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ एक ही बार SMS किया कीजिए और वो भी एक ही नंबर से। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे संगीता घटे अंजलि करवा, और अगला नाम है जी नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से अलीम पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का, दिलहरन गौतम अंजलि गौतम समृद्ध

पटेल, ये हमारे साथी हैं बालोदा छत्तीसगढ़ से। एक जवाब हमारे पास गलत आया है, ये लिखते हैं विशाखापट्टनम, जबकि ये जवाब गलत है। सही जवाब वाला अगला नाम है जी सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्य मल्होत्रा का, जो कि अनारकली बाजार जगराव से है। मानसा बस स्टैंड पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजनी रानी गर्ग, रवि गर्ग और इनके साथी। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटी लाडी। बिहार स्टेट से हैं डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम वली बेलदार। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीरबारी। अहमदाबाद, अच्छा फिर है जी बिहार कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चामोरिया, असलम वली चामोरिया और शरफुद्दीन वली चामोरिया। बोरसरा नैला से हैं नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद साहू और बीमा साहू। सांतड़ी से ईश्वर के दयाल कंबोज, लाजवंती कंबोज और भव्य कंबोज। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल और अगला नाम है जी छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। मारहाड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद सुहेल अब्बासी। कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, कदुआपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई। मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, यह है गिरिडीह झारखंड से। विजय सिंह लखेरा से लखेरा है महेंद्रगढ़ से। हांडीखेड़ा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया विशाल सपकाल। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज, संदीप दत्ता और बंसी। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा। जयश्री सुनील हैं बेंगलोर से। अमीर खुसरो रोड गंज ढुंडवाला से हैं डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार और शेख मोहम्मद कलीम। कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हिना साहिद खोकर। बनभगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश शारवा और आशा सारवा। विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक और इनके साथी हैं बोर खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से है मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और फातिमा गाजी। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। पुराना तालाब डुमराम से है वलीउल्लाह अंसारी, बक्सर बिहार से है राज एस डी अंसारी। चौहल्दा बागपत से है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। इंदिरा विहार दिल्ली से है डब्लू अंसारी और डोंडी रोहारा से है राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, बोधराज एक ही बार नाम लिखना था दोस्तों, तो अगला नाम है इसी में कमला रानी, गीतिका भानु। रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है उदय भान पाल, जय हिंद पाल और विमलेश पाल। तो लीजिए आप सभी के नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया था। तो इस सवाल से जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: दोस्तों, आज हमने आपसे सवाल किया था कि पहली बार आयोजित होने वाली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां पर आयोजित की जाएगी, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। और अब इससे जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पहली बार आयोजित होने वाली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का नई दिल्ली में अनावरण किया था। इस चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद के एका एरिना में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन योगासन भारत महासंघ और संबंधित खेल अधिकारियों के तत्वावधान में किया जा रहा है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक मैस्कॉट है वीर द लॉयन। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर योग और वेलनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना है। ये पहल योग को भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर आउटरीच के हिस्से के रूप में पेश करने के प्रयासों को दर्शाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आज के सवाल से संबंधित और विश्व योगासन चैंपियनशिप के बारे में।

0: दोस्तों अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। जी हाँ, ये दिन उन वीर शांति सैनिकों को समर्पित है जो युद्ध और संघर्ष से जूझ रहे देशों में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना सेवा करते हैं। साथ ही ये दिन उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने मानवता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दिन का जो इतिहास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 29 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UNTSO शुरू किया गया था। ये मिशन मध्य पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2002 में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की शुरुआत 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त देशों में शांति स्थापित करना और स्थायी स्थिरता लाना है। इन शांति मिशनों में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो नागरिकों की सुरक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहायता, मानवाधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक चुनावों का समर्थन तथा युद्ध के बाद समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। सन 1948 में से लेकर के अब तक संयुक्त राष्ट्र मिशनों की सेवा में सेवा करते हुए 4000 से अधिक शांति सैनिक अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं। इन्हीं वीर सैनिकों की याद में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष समारोह आयोजित किया जाता है जहां उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। यह पदक संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरस्क गोल्ड की स्मृति में दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। हर साल इस दिवस के लिए एक विशेष थीम भी निर्धारित की जाती है। इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन पीस यानी कि शांति में निवेश करें। ये थीम दुनिया में बढ़ते संघर्षों को रोकने, वैश्विक सहयोग बढ़ाने और स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देती है। आज महिलाएं भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में कार्यरत सैन्य और पुलिस कर्मियों में लगभग 16% महिलाएं शामिल थीं। महिला शांति सैनिक स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास स्थापित करने और महिलाओं व बच्चों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में अहम भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 5 जून 2026 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव शहीद शांति सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तथा मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क गोल्ड मेडल भी प्रदान करेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस साल भी भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वे लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ कार्यरत हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस हमें सिखाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सहयोग, सहिष्णुता और मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। आइए हम सभी विश्व शांति, भाईचारे और मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देने का संकल्प करें। तो दोस्तों ये थी बात, ये थी जानकारी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर।
1: जी।

दोस्तों अब बात करते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान किसान नेता और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन, संघर्ष और योगदान को याद कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े चरण सिंह जी बचपन से ही मेहनत, ईमानदारी और सादगी का प्रतीक थे। उन्होंने विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका असली उद्देश्य था किसानों और आम जनता की सेवा करना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कई आंदोलनों में भाग लिया और अनेक बार जेल भी गए। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने राजनीति में रहकर किसानों की आवाज़ को मजबूती दी। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उन्होंने 28 जुलाई 1979 में से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने कृषि सुधारों, किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत गांवों और किसानों में बसती है। उन्होंने अपनी पुस्तकों और विचारों के माध्यम से भी देश की आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। देश और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के करोड़ों किसानों के संघर्ष और सम्मान का प्रतीक है। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी देश के किसानों को प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के दुख दर्द को समझे और उनके लिए काम करे। छोटी सी जानकारी थी ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।

दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है आपकी बात akashvani@gmail.com। और अब कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ ही दीजिए अपने दोस्त आरती को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

कार्यक्रम स्वरांजलि में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र आरती। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज लकी अली के इस प्यारे से गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

ということですね。

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना था साहेबा, जो कि सजा था आदित्य रिखरी की सुरीली आवाज में। और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन नगमा, जिसे आप सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। ये गीत आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान की सुरीली आवाज में।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि का। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 9:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम विविध भारती से।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: फिल्म मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जब लेला ही इस बारी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप? शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। टिक, टिक, टिक, टिक।

रू पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है?
2: यशोदन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे विविध भारती से रिले किया गया था। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शुरू हो चुका है आपका अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, और मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र। दोस्तों, रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं होता, ये भावनाओं, विचारों और दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास होता है, और जब आपकी आवाज सीधे कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए तो बात और भी खास हो जाती है। इसीलिए नमस्ते कुरुक्षेत्र में हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपके विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का मंच देते हैं। क्या आपके पास कोई अनुभव है, कोई राय या फिर कोई ऐसा विचार जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हो, तो हमारा फोन नंबर मिला लीजिए, क्योंकि आपके जो फोन है, आपकी जो फोन कॉल्स हैं, वही हमारी असली ताकत है, इस कार्यक्रम की असली ताकत है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बात किसी की सोच बदल दे, किसी को प्रेरणा दे दे या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। तो देर है किस बात की, जल्दी से मिला लीजिए 0174-221-322 हमारा फोन नंबर, और साथ ही अपने विचार साझा करने के साथ साथ पूरी करवा लीजिए अपनी फिल्मी गीतों की फरमाइश, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत भी शामिल करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं आपकी फोन कॉल्स का इंतजार और आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये

0: हेलो हेलो।
1: हेलो बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, आपका नाम बताएं।
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है बहन जी, भले ही गर्मी कितनी पड़ रही है,
0: जी
1: पर आपके कार्यक्रम से जब जुड़ जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास ही नहीं होता।
0: ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बेहद प्यार करते हैं।
1: प्यार करते
0: जी
1: हैं,
0: जिन
1: प्रेम
0: जी
1: करते
0: जी
1: हैं
0: हाँ,
1: हम।
0: आप होता क्या है, जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना, तो जब उसके साथ गुम होते हैं तो हमें किसी चीज का ख्याल नहीं होता है ना। फिर चाहे कैसी परिस्थितियां हो, दुख हो, सुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, हमें किसी चीज की होश ही नहीं रहती है ना। तो ये जो
1: सही
0: हेलो
1: बात है बहन जी, हमें कोई एहसास ही नहीं होता जब आपके कार्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं, तो सब जितनी भी आपदाएं हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, सब दूर हो जाती हैं।
0: हाँ जी, तो अब गीत बताएं, आप कौन सा सुनना चाहते हैं आज?
1: बहन जी, प्यारा सा गीत है लता जी की आवाज में,
0: हाँ
1: फिल्म
0: जी।
1: है अपना देश, तो थोड़ा सा उसको मैं तरन्नम में बताऊंगा ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए गर्मी में सबको।
0: अच्छा, चलिए सुनाइए।
1: ए बाबू ले लो ना नारियल, पी लो रे पी लो बाबू, पी लो नारियल पानी, पी लो रे पी लो बाबू, पी लो नारियल पानी, और इस गर्मी में आओ अपनी प्यास बुझा लो, पी लो रे पी लो बाबू, पी लो नारियल पानी, पी लो रे पी लो बाबू, पी लो नारियल पानी।
0: जी बहुत ही खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाया है, और गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत प्यारा गीत भी आप चुनकर लाए हैं, और आपकी पसंद को हम जरूर पूरा भी करेंगे। लेकिन अब नारियल की बात हो गई है, तो नारियल पानी पीने के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा।
1: महजी पीने में भी अच्छा लगता है और ये ठंडक भी पहुंचाता है,
0: जी, बहुत हेल्दी होता है ना।
1: बहुत
0: और
1: हेल्दी होता है,
0: हाँ,
1: बड़े
0: अब
1: गुण होते हैं जी इसमें।
0: जी नारियल पानी को अगर आप सुबह 11 बजे तक पिए ना, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। ठीक
1: तो
0: है
1: ये आपने अब नई बात बता दी, हम 11 से पहले ही पियेंगे।
0: और अब हम आपकी पसंद का गीत शामिल करने जा रहे हैं। नारियल पानी के कुछ और फायदे हम जरूर बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद। ठीक है
1: ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी,
1: बहन।
0: धन्यवाद।

हेलो, लगता है दोस्तों हमारे साथ कॉल पर जो साथी थे उनकी कॉल कट हो गई है। खैर कोई बात नहीं, उनकी पसंद पर हम एक गीत जरूर सुनाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं नारियल पानी पीने के क्या क्या फायदे हैं। जी हाँ, नारियल पानी जो है वो शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है, पाचन को दुरुस्त बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है और दिल और किडनी की सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। नारियल पानी जो है वो एक प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर पेय पदार्थ है। इसमें कम कैलोरीज होती हैं और भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिए, इसमें जो प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। वर्कआउट के बाद ऊर्जा यानी एनर्जी आपको तुरंत लेनी है, पानी की कमी को पूरा करना है, तो उसके लिए आप नारियल पानी पीजिए। जो नारियल पानी है वो आपको मोटापे से भी बचा के रखता है, यानी कि अगर आपको मोटापा कम करना है तो आप नारियल पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसमें मौजूद बायो एक्टिव एंजाइम्स जो हैं वो पाचन क्रिया को बेहतर करते हैं और एसिडिटी व कब्ज से राहत दिलाते हैं। मीठे जूस या फिर सोडा के मुकाबले नारियल पानी में कैलोरी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसे पीने से पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और दिल की सेहत को दुरुस्त रखता है। भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेने से किडनी की पथरी में राहत मिलती है। नारियल पानी का सेवन जो है वो गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये नारियल पानी जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको पीने से चेहरे पर चमक आती है और पिंपल जैसी समस्याएं जो हैं वो कम हो जाती हैं, और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है। ठीक है, तो हर किसी को जो है नारियल पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमें प्रेरित किया है हमारे आज के जो लिसनर थे जगदीश राय गर्ग जी, उन्होंने, क्योंकि वो अपनी वो एक गीत ही ऐसा लेकर आए नारियल पानी का, जिसमें नारियल पीने की जो है वो

0: सारे फायदे भी उसमें बताए गए हैं, है ना। और गर्मी से बचने के लिए एक राहत वाला गाना भी वो उन्होंने शामिल करवाया गीत में, तो उसके लिए हम उसका उनका धन्यवाद करते हैं। और अब हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: दोस्तों बात करते हैं आत्मविश्वास की कि आत्मविश्वास क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब रास्ते कठिन लगते हैं, परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं और मन में सवाल उठता है क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे में जो शक्ति हमें संभालती है, जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, वही है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी कि खुद पर भरोसा। ये वो विश्वास है जो इंसान को गिरकर फिर से उठना सिखाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब के सफल आविष्कार से पहले हजारों प्रयोग किए थे और जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये सोच आत्मविश्वास की पहली पहचान है। इसी तरह से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि सपने वही सच होते हैं जिन पर विश्वास और मेहनत दोनों साथ हो। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के मिसाइल मैन बनने तक का उनका सफर आत्मविश्वास की प्रेरक मिसाल है। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्मविश्वास व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वासी लोग चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं और असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। लेकिन आत्मविश्वास अचानक नहीं आता दोस्तों, ये धीरे धीरे बनता है। इसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी होती है, सकारात्मक सोच रखनी होती है, छोटी छोटी सफलताओं से सीखना होता है, खुद पर भरोसा करना होता है और जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि हमें कभी डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर होने के बावजूद आगे बढ़ना है, क्योंकि हौसला अगर मजबूत होता है तो मंजिलें खुद रास्ता बन जाती हैं। तो ये हुई बात आत्मविश्वास की कि आत्मविश्वास क्या है और इसके क्या फायदे हैं, इसे हम कैसे अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन से हैं, है ना, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी पसंद का गीत। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: मैं ईश्वर दयाल कम्बोज बोल रहा हूँ जी, गांव सांतड़ी।
0: ईश्वर दयाल कम्बोज जी, कैसे हैं आप?
1: बड़े आनंद है जी, बड़ी कृपा है
0: जी। और क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, आपका कोई राय, आप अपनी कोई राय या फिर कोई विचार, आप कोई संदेश सभी साथियों को देना चाहते हैं तो बताइए।
1: ये तो अभी आप जी बोल रहे थे ना आत्मविश्वास
0: जी,
1: तो आत्ममंथन भी इसका ये एक ही मतलब है इन शब्दों का, आत्ममंथन
0: जी
1: यानी अपने आप की खुद की जानकारी। जब खुद की जानकारी हो जाएगी तो खुदा की जानकारी हो जाती है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: तो यानी खुदा का मतलब ये अल्लाह परमात्मा गॉड वाहेगुरु उसको जो भी कहे,
0: हाँ जी,
1: उस नाम से भी कहे, लेकिन आत्ममंथन।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। आत्मविश्वास तो जरूरी है, उसके साथ साथ आत्ममंथन करना भी बहुत जरूरी है। जब हम आत्ममंथन करते हैं तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है, है ना, बहुत संतुष्ट हम उससे होते हैं जब हम आत्ममंथन करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, अगर कोई बेचैन हो रखा हो तो वो मतलब किसी चीज को लेकर के परेशान हो रहे हो, है ना, किसी समस्या में हो, तो अगर उस वक्त वो आत्ममंथन करें यानी खुद पे ही सोचते जाए अपने अंदर, तो उन्हें जो है उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। और अब हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत।
1: ये है
0: हीर रांझा फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। चलिए आपकी पसंद को पूरा करते हैं, सुनवाते हैं आपको हीर रांझा फिल्म का गीत आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो हेलो
1: हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी। मेरा
0: जी, आपका नाम बताएं।
1: नाम सुरिंदर सिंह लाडी, गांव हमारा सुलर पटियाला पंजाब।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ड्राइवरी करते हैं मैडम।
0: अच्छा जी, तो कहाँ कहाँ के, मतलब ड्राइवरी आप करते हैं तो कहाँ कहाँ तक अपने जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें लेकर जाते हैं आप?
1: मैडम अब तो मैं कार चला रहा हूँ, पहले मैं ट्रक चलाता था, उस टाइम तो काफी घूमते थे, अब तो पंजाब पंजाब में चलाते हैं।
0: अच्छा, पंजाब पंजाब में चलाते हैं। और घर
1: हाँ
0: परिवार सब
1: जी
0: बढ़िया है आपका?
1: हाँ जी हाँ जी, सब
0: जी,
1: बढ़िया है मैडम जी।
0: गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: सन ऑफ इंडिया का सुना दो जी, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है।
0: चलिए, आपकी पसंद को पूरा करेंगे। और कोई संदेश आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हो?
1: मेरा दोस्त लाडी सिंह समाणा मंडी को थोड़ा सत श्रीकाल भेजता जी,
0: हाँ जी,
1: समाणा मंडी से आपको नमस्ते भेज रहा जी।
0: अच्छा, उन्हें भी हमारा नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे।
1: हाँ जी धन्यवाद मैडम जी।
0: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। आपकी पसंद का गीत हम शामिल कर रहे हैं। धन्यवाद।
1: ओके जी ओके।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों

0: बात करते हैं समुद्री रास्तों के बढ़ते महत्व के बारे में। जी हाँ, जब भी व्यापार, यात्रा या दुनिया को जोड़ने की बात होती है तो समुद्री रास्तों का महत्व अपने आप सामने आ जाता है। आज दुनिया के लगभग 80-90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन समुद्री मार्गों के द्वारा होता है, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहीं ना कहीं समुद्रों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, प्राचीन समय में भी समुद्री रास्ते व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बड़ा माध्यम रहे हैं। भारत का भी समुद्री व्यापार से गहरा संबंध रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल जैसे बंदरगाह दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र माने जाते थे। आज के समय में भी समुद्री रास्तों का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक सुरक्षा काफी हद तक समुद्र पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, और इसी कारण ये क्षेत्र आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं भारत के लिए हिंद महासागर विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के आधार पर और लगभग 70% व्यापार मूल्य के आधार पर समुद्री मार्गों से होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, समुद्री व्यापार को तेज करना और तटीय क्षेत्रों का विकास करना है। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में दुनिया ने यह भी देखा कि जब समुद्री रास्तों में बाधाएं आती हैं तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। साल 2021 में स्वेज नहर में एक विशाल मालवाहक जहाज फंस जाने से कई दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित रहा। इस घटना ने दुनिया को समुद्री मार्गों की अहमियत का एहसास और अधिक करवा दिया। इसी तरह से हाल ही के समय में लाल सागर क्षेत्र में तनाव और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों ने भी वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। कई जहाजों को लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े, जिससे कि समय और लागत दोनों बढ़ी। दोस्तों, आज समुद्री रास्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित हो रही है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री जैव संसाधनों का उपयोग शामिल है। भारत भी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में समुद्री क्षेत्र रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा स्रोत बन सकते हैं। तो दोस्तों, समुद्री रास्ते केवल पानी के रास्ते नहीं है, ये दुनिया को जोड़ने वाले ऐसे मार्ग हैं जिनसे व्यापार, तकनीक, संस्कृति और विकास की नई संभावनाएं जुड़ी हैं। तो अब चलिए जानते हैं हमारे अगले श्रोता का नाम और क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी पसंद का गीत है, ये सभी जानते हैं। हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं।
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरप्रीत से बोल रही बात कर रहा हूँ। आपका नियमित श्रोता, मगर थोड़ी लेट ही कॉल करता हूँ, जल्दी तो नहीं करता हूँ, है तो नियमित श्रोता है, मगर लेट कॉल करता हूँ।
0: श्रोता होना जरूरी है, और कॉल का तो देखिए 15 दिन का तो नियम हमने भी बना रखा है कि एक
1: महीने निकल जाते मेरे।
0: हाँ जी,
1: 4-5 महीने के बाद कॉल करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, नहीं इतना भी गैप मत दीजिए, हमारी तरफ से तो सिर्फ 15 दिन का गैप है ना।
1: चलो मैम, फिर बहुत सारे केंद्र है तो बारे बारे में सभी मिलते हैं, कहीं इधर उधर करते रहते हैं, मौका तो फिर निकल जाता है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप जी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को आप कब कब सुनते हैं?
1: मैम यही प्रोग्राम सुनते हैं, कभी कभी जब सुनते तब।
0: अच्छा, नमस्ते कुरुक्षेत्र आपको पसंद आता है?
1: जी जी,
0: चलिए। सुबह सवेरे नहीं सुनते आप?
1: नहीं, बाकी नहीं सुनता हूँ, ये सुनता हूँ।
0: सुना कीजिए, सुबह सवेरे सुना कीजिए। और हमारे
1: क्या करें, फिर बहुत सारे केंद्र फिर करते थोड़ा तो किसी कारणवश फिर नहीं सुन पाते हैं, थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं।
0: चलिए ठीक है। अच्छा, आपने गीत कौन सा बताया हमें?
1: मैम मूवी का नाम है क्या बोलते, नया दौर, तो गाने का बोल है उड़े जब जब जुल्फे तेरी।
0: चलिए, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं कॉल करने के लिए।
1: मेरे दोस्त है, कुछ उनके नाम ले सकते हैं?
0: बिल्कुल लीजिए।
1: पुष्कर नाथ शर्मा, पंछी राम शर्मा, रिंकू देवी और राकेश कुमार, पूर्ण वर्मा जी हैं, और क्या बोलते हैं सेवालोट जी है, और धर्मवीर जी और भगवान सिंह परमार जी है।
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी साथी भी रेडियो पर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: कोल्ड ड्रिंक है, पूरा दिन व्यापार से जुड़ा रहता हूँ और जहाँ कहीं भी फोन इन प्रोग्राम होता है
1: हाँ
0: तो कोशिश करता हूँ कि सफलता मिल जाए तो बात हो जाए, नहीं तो बाकी पूरा प्रोग्राम मैं खास तौर पर सुनता हूँ और अच्छे अच्छे खास तौर पर श्रोताओं की वार्तालाप होती है तो रिकॉर्ड करता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनते हैं?
0: मुझे फोन इन प्रोग्राम बहुत पसंद है, मेरा पहला प्यार अगर कहा जाए तो फोन इन प्रोग्राम है। खास तौर पर सुबह 10 बजे से सूरत FM चालू होता है मेरा, रात को 10:15 बजे पौने 10 बजे रेडियो बीरगंज जो नेपाल से प्रसारित होता है तो लास्ट मेरा 12:15 तक वहाँ तक फोन इन प्रोग्राम चालू रहता है, तो कह सकता हूँ मेरा पहला प्यार फोन इन प्रोग्राम है।
1: अच्छा जी, तो फोन इन तो है, इसके अलावा हमारा ऐसा देश है मेरा, ये कार्यक्रम हम हर दूसरे और चौथे शनिवार को लेकर आते हैं आपके लिए, उसको शाम के वक्त सुना कीजिए। हाँ जी, इसके अलावा कुछ बातें कुछ गीत वो भी कार्यक्रम है, सुबह हम लेकर आते हैं 8:30 बजे आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जानकारी उसमें बहुत होती है ना?
0: बराबर।
1: हाँ, उस कार्यक्रम में हम आपके नाम भी शामिल करते हैं, अगर आप हमें जवाब भेजते हैं ना SMS के द्वारा तो उसमें हम आपके नाम भी शामिल करते हैं। तो आप नमस्ते कुरुक्षेत्र के अलावा इस केंद्र के और भी कार्यक्रम सुना कीजिए, ठीक है?
0: ठीक है
1: जी। और कुछ और कहना चाहेंगे आप, अपना कोई संदेश साझा करना चाहेंगे?
0: खासतौर पर अभी गर्मी का माहौल चल रहा है
1: जी,
0: पशु और पक्षी और जानवरों का ख्याल रखना है, जैसे कि हमारे आसपास में कोई जगह इस तरह से खाली है तो पशु पक्षी के लिए खासतौर पर पानी की व्यवस्था करे, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ हमें दिया है तो उनके लिए दाने की भी व्यवस्था करे, क्योंकि जो पशु पक्षी की जो दुआएं होती है वो सातों आसमान तक पहुंचती है। तो मेरा ये मानना है कि गर्मी के मौसम में जैसे हमें प्यास लगती है वैसे पशु पक्षी जानवर को भी लगती है, तो खास तौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पक्षियों के लिए पशु के लिए पानी की व्यवस्था करें।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें भी भगवान ने हमें बनाया है और ऐसा बनाया है कि जिसमें हम खुद की भी चिंता कर सकते हैं, खुद के लिए भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और जो हमारे आसपास जो अन्य जीव जंतु मौजूद हैं उनके लिए भी हमें सोचना है, उनकी चिंता भी करनी है, उनके लिए भी उनका जीवन बेहतर बन सके ऐसा प्रबंध हमें करना है ना, दाना पानी का प्रबंध हमें करना है। तो चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आपकी पसंद का गीत नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि ये समय हो चुका है कार्यक्रम का, ठीक है? तो हाँ जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है हमारी आकाशवाणी आपकी बात akashvani@gmail.com, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप अपने विचार सुझाव शिकायत जो भी आप कहना चाहें वो हमें ईमेल कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती से।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: ले सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्म दिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी

0: समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने

कभी पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी। तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब हरियाणा सहित 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 11 मई से 11 जून राज्य व्यक्ति मुफ्त पशु टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने स्वयं विभिन्न जिलों में चल रहे टीकाकरण का जाकर निरीक्षण किया। डॉ. प्रेम सिंह ने बताया कि विभाग की टीमें घर घर जाकर गायों और भैंसों को मुंहखुर और गलघोंटू जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक ही संयुक्त टीका लगा रही है, जिससे कि पशुओं को संक्रामक वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाया जा सके, ताकि दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो और पशु की जान बचाई जा सके। अब तक विभाग द्वारा कुल 55,00,000 पशुओं में से 18,00,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुपालकों को ये सुविधा निशुल्क दी जा रही है। विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए चलाई जा रही मोबाइल वैन के बारे में डॉ. प्रेम सिंह ने कहा,
2: केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत 1,00,000 एनिमल के ऊपर एक वैन का प्रोविजन किया गया है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह सैनी जी ने निर्देश दिए हैं कि इसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है इसका 12 से लेकर रात 8 बजे तक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको 6 से लेकर रात 10 बजे तक का किया जाए, जो कि अभी रिकॉर्ड दिन है। इसका खास फायदा क्या है कि इसमें जो हमारा एक टोल फ्री नंबर रहता है 1962, इस पे कोई भी फॉरवर्ड कॉल करेगा तो उस कॉल से उसको रिवर्ट बैक उसको वापिस फोन आ जाएगा कि उसके घर पे डॉक्टर कितनी देर तक पहुंच जाए।
0: कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल ने बताया कि किसान योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत 25 जून को उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा।
3: ERM स्लोप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत हमारे पास टारगेट आए हैं। इसमें 12 मशीनें हैं जो हमारे आने वाले टाइम में CRM जो स्ट्रा स्टेबल बर्निंग उसको मैनेजमेंट करने के लिए काम आएंगी, और 15 तारीख तक किसान भाई अपने रजिस्ट्रेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सुपर सीडर है और बेलर मशीन भी है, हे रैक है और सुपर सीडर भी है और रोटरी स्ट्रेसर है। इसमें किसान अपनी इंडिविजुअल मशीन भी ले सकते हैं। इसमें 50% अनुदान है और डायरेक्ट ये किसान

0: के बैंक खाते में आएगा।
1: योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए किसान कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी, बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज इक्का दुक्का जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान भी जताया गया है। पंचकुला के रामगढ़ स्थित टीबीआरएल रेंज ने 31 मई को होने वाले हाई कैलिबर बस परीक्षण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्राप्त पत्र के अनुसार यह परीक्षण 31 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वायुसेना के उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा। इस हाई कैलिबर बम के ट्रायल से उड़ने वाले कण आसमान में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन पर 2 किलोमीटर के रेडियस तक के गांव भानु और गांव बिल्ला स्प्लिंटर प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को इन गांवों में लोगों को इस समयावधि के दौरान घर के अंदर रहने के दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सब रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफ़र का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम सफ़र में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूँगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवार है और बहुत सारी शब्द जो उनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना। मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज पालिका बाज़ार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाज़ारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाज़ारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा, और वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतज़ार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाज़ारों के नाम और वहाँ पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाज़ार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं। फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमें तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाज़ार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाज़ार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिग्गी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर ज़िला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका ज़िले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और ख़रीदारी का मज़ा तो बाज़ार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाज़ार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाज़ार है जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाज़ार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाज़ार है, जिसे पटवा बाज़ार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी ज़िले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैम्प कवर आदि। जी हाँ, बाज़ारों की बात की जाए तो भिंडी बाज़ार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं। और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाज़ारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूम कर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाज़त चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफ़र। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. We have a report.
2: The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to the litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in the bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of the bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
1: Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
3: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
1: Addressing students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust had been breached. He said the authorities had taken a tough decision because they did not want even a single deserving student's future to fall into the hands of examination mafias or become a victim of irregularities. Emphasizing quality and transparency, he said the decision was taken to maintain fairness in the examination system.
3: I want to assure the student that the mistake that has been made will not be repeated. The teachers who were given the question were compromised. We have made a tough decision that we will not hand over any student's right to the exam mafia. We respect the mental state of the children. We want to take care of them. We want to give them an error-free examination process.
1: The minister reassured that every possible effort is being made to conduct an error-free examination amid growing concerns surrounding the examination process. The Delhi government will provide free travel in all Delhi Transport Corporation DTC buses to the appearing candidates for NEET-UG 2026 examination, which is scheduled on the 21st of next month. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the candidates can travel free in the DTC buses upon presentation of a valid admit card. She added that no student should face inconvenience on a day that holds such importance for their future. India has marked a historic milestone in its clean energy journey. Union New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that 40 lakh households have now been empowered with rooftop solar under PM Surya Ghar scheme. He added that more than renewable energy initiative, this transformative scheme is turning citizens from power consumers to power producers. The scheme is also enabling families to reduce electricity expenses, benefit from government subsidies, and move towards zero electricity bills. The minister highlighted that with every solar-powered home, the country moves closer towards energy security, environmental sustainability, and the vision of a self-reliant Vikasit Bharat. Union Textiles Minister Giriraj Singh today said India has emerged as a stronger economy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and the textile sector is achieving rapid growth through reforms and policy support. During his two-day visit to Andhra Pradesh, the minister visited Mohan Spintex Company at Mallavalli Industrial Park in Krishna District. He said India's textile market is currently valued at over 15 lakh crore rupees, and the government is working to increase it beyond 25 lakh crore rupees by 2030. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today inaugurated the India's first integrated next-generation aviation weather and fog monitoring system, Skycast, at Indira Gandhi International Airport in New Delhi under the flagship mission MAUSUM. Addressing a press conference, Dr. Singh said the new system aims to strengthen airport weather monitoring and fog forecasting. He said Skycast has been developed to support safer, more efficient and weather-resilient air transportation operations, particularly during dense winter fog and rapidly changing weather conditions.
4: Today, we are dedicating to the nation through the aviation sector an integrated weather monitoring system for the aviation sector, which would enable the air flyers, the air crew, the air pilots to determine with precision, particularly during the foggy seasons, during the hazy weather, where you have a lot of pollution, so much of visibility gets affected also because of the other particles. So all that through an integrated equipment called Skycast.
1: The Reserve Bank of India, RBI, in its annual report released today, stated that robust macroeconomic fundamentals will support the growth trajectory of the Indian economy in the current fiscal year, despite headwinds from elevated energy prices, supply chain disruptions, and global market volatility. According to the report, healthy balance sheets of the corporate and banking sectors, along with the government's continued thrust on capital expenditure, bode well for India's strong growth trajectory. More from our Mumbai correspondent.
5: The RBI in its annual report for 25-26 noted that geopolitical risk has re-emerged as the dominant drag on global growth in 2026, adding that the adverse impact of the outbreak of the conflict in West Asia at the end of February 26 is reflected in the forecast for global growth and inflation. Moreover, the implementation of various trade agreements with key trading partners would provide further momentum to India's growth, the report said. India remained the fastest growing major economy, expanding at 7.6% during 25-26 compared to 7.1% a year ago, supported by strong domestic consumption, sustained investment, proactive policy initiatives, and sound macroeconomic fundamentals. The report further stated that the outlook for the agriculture sector in 26-27 remains contingent upon the progress and distribution of the southwest monsoon. It also said inflation in 26-27 is likely to remain aligned with the target due to adequate food grains stocks, sufficient reservoir levels, and stable agricultural prospects despite possible El Nino conditions and above normal summer temperatures. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi today asserted that humility, forgiveness and noble conduct are the true ornaments of personality. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, along with these qualities, countrymen are steadfastly engaged today in the fulfillment of the resolve for a developed India. The government has refuted a deep fake video of Prime Minister Narendra Modi with fabricated claims related to Italian Prime Minister Giorgia Meloni and remarks about Iran-US mediation. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has claimed that the video is digitally altered and AI-generated. PIB noted that the video is being circulated by Pakistani propaganda accounts and reiterated that Mr. Modi has not made any such statements. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot today accepted the resignation of the outgoing Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made. He has also been asked not to take any executive decisions during this period. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed the need to adopt bhakti and meditation to attain inner and global peace. Addressing the 45th anniversary celebrations of the Art of Living Foundation International Centre in Bengaluru today, he said bhakti signifies dedication towards oneself, family, society, the nation and humanity as a whole. He said bhakti inspires people to live in harmony with others and with themselves. Quoting the teachings of Sri Sri Ravi Shankar, he said, "The art of living lies in embracing change and enjoying every moment of life." He added that Dhyan, Gyan and Gaan enrich both life and personality. Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has congratulated the government of Odisha, Intel and 3DGS on signing a memorandum of understanding to bring substrate manufacturing technology to India. Mr. Vaishnav said this will further advance the semiconductor ecosystem in India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. In a social media post, the Vice President said, "The former Prime Minister was a visionary leader and a tireless advocate for farmers who dedicated his life to the welfare of the agrarian community and the upliftment of rural India." The Lok Sabha Speaker underlined that the entire life of the former Prime Minister was dedicated to the upliftment of the country's farmers, labourers and villages. Mr. Shah noted that Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh played a pivotal role in strengthening democratic values from the freedom struggle to the emergency period. At least six workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur district of Uttar Pradesh. The bridge, which stretches from Morkandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mahapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mahapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
6: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana, and adjacent areas of Himachal, etc., and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically, if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat, and Andhra Pradesh, and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu.
1: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
7: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
8: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
7: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
9: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
7: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
9: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
7: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
10: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
11: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
7: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
12: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
7: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है। तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद का
1: नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की चाली है।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है ओ यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है, इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को,
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: त्रिपुरा से मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं?
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा मुझे बताइए, त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते
0: हैं। सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या है? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।
2: लक

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ मैम।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो वो सब फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से।
0: हाँ।
1: तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है।
0: अच्छा,
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 30 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए वाला गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी,
0: था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ, वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी।
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
0: जी,
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से
0: जी,
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी,
0: हर्षिता आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662, 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आप सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का। वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो हैं। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाए।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाती।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज़ में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: गया के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं इनकी जरा।
3: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि पर।

शाम 6:20 पर आप सुन पाएंगे गीता संदेश। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीता के 4 अध्याय से श्लोक संख्या 18 से 21 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर रामचंद्र की।

शाम 7 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम ग्राम संसार और शाम 7:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे कार्यक्रम जय जवान।

शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी सफर विषय पर और साथ ही सुनवाएंगे उनकी फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें। इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे जिनकी फरमाइशी आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से।

और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए फिल्म नया दौर का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म करण अर्जुन से हम आपको सुनवा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय के बारे में। दोस्तों, आज है 29 मई और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका जो आरंभ है वो 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले ही मिशन 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करती है। इसमें दुनिया भर के सैनिकों और पुलिस को तैनात किया जाता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है। श्रोताओं, इस विषय पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: श्रोताओ, हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों यानी जो प्राय ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट के रूप में जिनको जाना जाता है, क्योंकि ये हल्के नीले बैरेट और हेलमेट पहनते हैं। इनमें सैनिकों और पुलिस अधिकारियों और नागरिक कर्मियों को शामिल किया जा सकता है। सदस्य राज्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर शांति सेना को योगदान दिया जाता है और शांति अभियानों में नागरिक कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती और तैनात किया जाता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और भारत, इनका आपसी क्या संबंध है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। नवंबर 2021 से तक भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और 5वां सबसे बड़ा पुलिस योगदान देने वाला देश है। वर्ष 1948 में दुनिया भर के जो स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से 49 में 2,00,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी थी। और अब हम अगर महिलाओं की बात करें तो भारत में महिलाओं को यूएन शांति मिशन में भेजने की एक लंबी परंपरा रही है। वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बना भारत। और शांति अभियानों के हिस्से के रूप में कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के बावजूद भारत ने श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुख्यालय वाले एक समान मिशन पर नियमित रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। भारत ये इसने दोहराया कि जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने और नियंत्रण रेखा, जिसको हम LOC के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना के बाद मिशन ने अपनी जो है प्रासंगिकता खो दी है। फिर भी ये एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम की अगली चर्चा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि की विषय में। आज है 29 मई और इसी दिन चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि होती है। चौधरी चरण सिंह हमेशा लोगों के दिलों में किसान नेता के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने यूपी सीएम रहते हुए किसानों के लिए बड़े अहम फैसले लिए थे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, जो वर्तमान में हापुड़ के नाम से जाना जाता है, कि नूरपुर गांव में एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे तेवतिया गोत्र से संबंध रखते थे और 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी राजा नाहर सिंह के वंशज थे। पिता मीर सिंह एक किसान थे और उनका जो बचपन है वो धूल मिट्टी फसलों के बीच में बीता, जिससे वे अपने आप को जमीन से मिट्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, जिसने उन्हें जो ग्रामीण समाज है, किसान समाज है, जो मजदूर समाज है, उसके दर्द को बहुत करीब से महसूस करने का मौका दिया। उन्होंने 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1925 में इतिहास में एमए की उपाधि हासिल की और उसके बाद 1927 में मेरठ कॉलेज से कानून यानी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों से ओतप्रोत होकर वे जल्दी ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसके दौरान उन्हें कई बार ब्रिटिश जेलों की हवा खानी पड़ी और लेकिन उनका जो हौसला है वो कभी डगमगाया नहीं। इनके बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ हम कार्यक्रम को बढ़ाते आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओ, हम बात करें तो नाबार्ड की स्थापना के लिए चौधरी चरण सिंह ने राह दिखाई। आपातकाल के बाद 1977 के ऐतिहासिक चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की कैबिनेट में गृहमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में शानदार काम करने के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन इसी दौरान उन्होंने देश के विकास का एजेंडा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को पूर्णतया मंत्रालय का दर्जा दिलवाया। एक स्वतंत्र मंत्रालय ये बन गया और नाबार्ड की स्थापना के लिए ठोस वैचारिक आधार तैयार किया। 29 मई 1987 को 84 वर्ष की आयु में इस महान नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली में यमुना तट पर स्थित उनके समाधि स्थल को किसान घाट का नाम दिया गया और उनके जन्मदिन 23 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। अब आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात शाम 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और उसके बाद आकाशवाणी रोहतक से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer.

0: the distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that LPG production is all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
1: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
0: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. The Supreme Court today stressed accountability for the lapses in the NEET paper leak case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe was hearing pleas on the matter, including one seeking a direction to replace or restructure the National Testing Agency with a robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The bench asked the centre to file an affidavit and posted the matter for hearing in the second week of July. Solicitor General Tushar Mehta told the bench that the government is concerned about the youth and is committed to ensuring there are no lacunae. Benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of the trade. The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in qualifier 2 match in New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. ये आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। सरकार ने कहा कि देश एक और पोत के 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद और कुरुक्षेत्र में जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीत की घोषणा किया है, वो रीनीत सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है, जो रक्षक था वही रक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बने 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन तथा 21 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 16 नए स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष और समर्पित उपचार के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों में प्रतिवर्ष 34 लाख रुपए की लागत से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की।
4: स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जिला के अस्पतालों में एमआरआई सेवा और चरखी दादरी जिला अस्पताल और बहादुरगढ़ उपमंडल अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है।
5: आयुष्मान भारत योजना, चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हम सब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।
2: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार 14 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है।
6: वर्ष 2014-15 की तुलना में 5 गुना ज्यादा तथा पिछले वर्ष से लगभग 3300 करोड़ ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन की कमी को पूरा करने, नए उपकरण उपलब्ध करने, जांच सेवाओं में विस्तार करने, दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।
2: मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में आज स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हिसार में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया,
7: कार के अंदर 3 जगह पे अक्सर हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, एक सराव में, एक खोद में, बड़ाखेड़ा में, और लगभग 2 करोड़ की लागत इसमें आएगी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं।
8: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशियंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशियंट इन्वेंट्री टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमपी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। इस पोत से लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया जा रहा है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने आज कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 6 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत में एफआईआर को लेकर श्री कृष्णलाल पवार ने कहा,
9: जिस प्रकार से नेगलिजेंसी मुझे नजर आई तो मैंने एफआईआर के आदेश दिए। अधिकारियों से मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा अवसर ना दे जिससे मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ और अधिकारियों से भी यही बात कहूंगा कि हर मामले को आप निपटान करके मेरे पास सामने आए तो उसमें लोग कहें कि हमें न्याय मिल चुका। अभी किसान भाइयों ने सुबह शिकायत मुझे दी है और मैंने बाकायदा सबको दी है।
2: वल्लभगढ़ में आज मुजेसर अंडरपास निर्माण कार्य विधिवत भूमि पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। वल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण से लोगों को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये अंडरपास लगभग 18 महीने में तैयार होगा।
9: 12 करोड़ की जमीन परचेज करी है और अंडर पास 12.5 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी बनाएगा और 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल बनकर तैयार होगा और जिससे मंजेसर गांव को लाभ मिलेगा और जो जगत को लाभ मिलेगा और 22-23 से
2: हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आयुष्मान कार्ड होने इलाज उचित कार्रवाई न करने के चलते भिवानी सिविल अस्पताल के आयुष्मान के मामलों को देखने वाले अधिकारी विनोद को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी चलने, बादल गरजने और बारिश होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
10: FM 101.4 MHz पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गीता संदेश।
11: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 18 से आगे की व्याख्या। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। यह श्लोक संदेश देता है कि इस जीवन में वही मनुष्य सार्थक जीवन यापन कर पाता है जो कर्म में अकर्म को देख लेता है तथा अकर्म में कर्म को देखता है। वही मनुष्य समाज में या संसार में श्रेष्ठ एवं ज्ञानी है, वह योगी है और उसने अपने सभी कर्म को प्राप्त कर लिया है। यह श्लोक अनासक्त कर्म की भावना को और अधिक स्पष्ट करता है। जब हम अपने कर्म को अनासक्त होकर के करते हैं तो प्रायः करके उन कर्मों से दूर हो जाते हैं जो केवल इच्छा से उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से अकर्म का अभिप्राय है कर्म करते हुए भी कर्म के परिणाम से मुक्त रहना, तथा जो व्यक्ति कर्म के परिणाम से मुक्त रहता है, उसके बंधन से मुक्त रहता है, यही जीवन का ध्येय है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। जो व्यक्ति जीवन को क्लेश एवं तनाव से मुक्त कर देता है वह व्यक्ति जीवन में सार्थक जीवन जी पाता है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी या छोटे छोटे बच्चे भी प्रायः प्रत्येक कर्म आसक्ति के साथ में करते हुए दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि वे दुखों से ग्रसित रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वह है जो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है, अर्थात अकर्म से अभिप्राय ही यह है कि निष्काम कर्म, जो कर्म करने के साथ साथ में उसमें आसक्त नहीं होता और निष्काम भाव से कर्म करता है। और इसी प्रकार से अकर्म में कर्म देखना यह भी एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। इसका भाव है कि हम जीवन में एक क्षण के लिए भी कर्म शून्य नहीं होते। जब हम कुछ भी बाह्य कर्म नहीं कर रहे होते हैं तब भी हम आंतरिक कर्म तो कर ही रहे होते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों दृष्टियों से युक्त होता है और गंभीरता के साथ में आत्म परीक्षण करता हुआ जीवन यापन की तरफ बढ़ता है वह व्यक्ति सदैव आनंदित रहता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यह श्लोक भी जीवन के एक अद्भुत दर्शन को स्पष्ट करता है, और इसमें कहा है कि वह व्यक्ति जिसके सारे के सारे आरंभ जीवन का प्रत्येक कार्य, चाहे वह अध्ययन का हो, चाहे वह व्यापार का हो, चाहे वह अन्य किसी क्षेत्र का हो, चाहे अपने संतति के प्रति दायित्व का हो, जितने भी कार्य हैं वे सभी कार्य जो व्यक्ति कामना एवं संकल्प से रहित होकर के करता है, वह व्यक्ति जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं वही व्यक्ति पंडित होता है। वास्तव में यह श्लोक मानवीय चेतना की उच्चतम स्थिति को स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को क्षणिक स्वार्थ लालसा से मुक्त करके सार्वभौम दृष्टिकोण के साथ में करता है, और ऐसी स्थिति में वह कार्य करते हुए कुछ भी नहीं कर रहा होता है, अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म के करणीय भाव से मुक्त रहने की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसके फल, उसके बंधन ज्ञान की अग्नि के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, और ऐसा ही व्यक्ति भगवान कृष्ण की दृष्टि में पंडित है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी होता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। यह श्लोक भी भारतीय दर्शन की एक उच्चतम स्थिति को व्यक्त कर रहा है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में होता है। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ करके जो व्यक्ति नित्य तृप्त, जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करता है और अंतर्लीन मन से सदैव तृप्त रहता है, निराश्रय और बिना किसी पर आश्रित हुए हुए कर्म में लीन होता है, कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि, और समाज में कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी व्यक्ति जो है नैव किंचित करोति सह, वह कुछ भी नहीं कर रहा होता, अर्थात कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति के अंदर रहने की जो साधना है उसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार का व्यक्ति चाहे अपने छोटे से कार्य और व्यवसाय में भी संलग्न है, उन्हें भी बाह्य समाज और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवकाश नहीं होता और उनमें समाज के उद्धार की इच्छा शक्ति भी नहीं होती। परंतु यह श्लोक मानव को महामानव बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है जिसमें केवल समाज और राष्ट्र के हित में अनासक्त भाव से स्वयं को तल्लीन करता है, और यही कारण है कि गीता के इस प्रकार के प्रेरक संदेश ने स्वतंत्रता के नायकों को भी अमर बलिदान के लिए प्रेरित कर दिया। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम। यह श्लोक भी मानवीय आत्मा दिव्य शक्ति से युक्त किस प्रकार हो जाती है इसका वर्णन करता है। जो व्यक्ति आकांक्षा से रहित होकर के अपने चित्त एवं आत्मा को वश में करता है तथा सभी प्रकार के जो परिग्रह हैं, जो संपदाएं हैं, उनका त्याग कर देता है। भारतीय दर्शन में अपरिग्रह का महात्म्य सर्वविदित है और उसी अपरिग्रह की वृत्ति को ही त्यक्त सर्व परिग्रह के रूप में भगवान कृष्ण इस श्लोक में प्रकट करते हैं। तथा परहित के लिए जो शरीर के द्वारा कर्म करता है उसे कोई भी दोष नहीं लगता। समाज में कर्म तो सभी करते हैं, परंतु स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म आपको दोषवान बना देता है। पर जब हम अपना कार्य परहित के लिए करते हैं तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दोष लगता नहीं है। वास्तव में पुण्य तथा पाप का संबंध शरीर के कार्यों से नहीं है, बल्कि जब कोई व्यक्ति अपनी आकांक्षा, इच्छा और वासना से मुक्त हो जाता है तो उसका संपर्क केवल भगवत इच्छा के साथ में हो जाता है और इस प्रकार परम इच्छा को प्रतिबिंबित करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इस जीवन से या इस जीवन के साथ में भी जीवन मुक्त बन जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में जीवन मुक्त होने की जो उच्चतम स्थिति है उसका मूल स्वरूप इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करते हुए केवल शारीरिक कर्म करता है वह व्यक्ति कुर्वन न आपनोति किल्विषम, वह किल्विष को प्राप्त नहीं करता। किल्विष का अभिप्राय है पाप, दोष या जितने भी आपके अंदर अपघात होते हैं, जो छल कपट हैं, वे सब के सब किल्विष के द्वारा गृहीत होते हैं। इस प्रकार से परिग्रह का त्याग करके एवं बाह्य पदार्थों के संपर्क से दूर रहता हुआ केवल परहित के कार्य करने वाला व्यक्ति शुभ से युक्त होता है एवं अशुभ से मुक्त होता है। वह वर्तमान जीवन में भी जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है और भविष्य में भी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज हमने गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 18 से श्लोक संख्या 21 तक की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण की।

अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता।

मेहर सिंह छुट्टी पूरी होने के बाद और जब घर तो चला बिस्तरा ठाक है तो भाई सब जानो है जो फौजी ने जब छुट्टी आवे जब पूछे कह दिन की छुट्टी आया नौका दो महीने की और जब को पांच चार एक दिन रह ले जब ने पूछे भाई छुट्टी कितने दिन की आया परसों जाना भाई छुट्टी पूरी हो ली उसकी औरत कह लगी मन नहीं ले चले गए ले रहे बिना तर ने कित ले दिया तो चलने की तैयारी करती जब छुट्टी काट कर था तो क्या हुआ परिवार में तो क्या हुआ

बेताक और गाड़ी में बैठ के पहुंचे अपनी यूनिट में, जाके अपने यारे प्यारे तरामा किसनी करी और फिर विचार करया कि फौजी के साथ भाई के वाका बीते से, और भाई फौज में तो होना इतना चाहिए, इसमें तो कोई नरा बाखड़ा रह रहे हो तो बड़ जान के ना तो ना।

0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
2: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई

0: यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
1: अभी आइए सुनते हैं ये वार्ता। बीज की गुणवत्ता, डॉक्टर शुकरण कंबोज और महेंद्र शर्मा की बातचीत।

0: अब आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित कुमार, पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय किरमच। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो बारिश का मौसम है उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, खास करके जो थनेला रोग है वो क्या है। इस विषय पर हम जानकारी लेंगे डॉक्टर अमित कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैसे कि बारिश का मौसम है, किसान भाई ये भी जानते होंगे कि भाई बारिश के मौसम में पशुओं में खास करके बीमारी आ जाती है थनेला रोग की, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो थनेला रोग है वो क्या है।
2: तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को, जो थनेला रोग है ये दुधारू पशुओं का एक रोग है मुख्यतः, और ये सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो पशु दूध देते हैं
1: जी,
2: और ये बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान किसान को पहुंचाता है, क्योंकि एक तो इससे जो उसका दूध का जो उत्पादन है
1: जी
2: वो कम हो जाता है, दूसरा जो नुकसान ये है कि इसका इलाज महंगा और थोड़ा सा लंबा चलता है
1: जी,
2: और एक ब्यांत में अगर किसी पशु को थनेला रोग हो जाता है तो उस ब्यांत में उस पशु का पीक उत्पादन पे आना बहुत मुश्किल है
1: जी।
2: तो सबसे पहले थनेला जो रोग है, ये जो दूध बनाने की जो ग्रंथियां होती हैं दुधारू पशु में, उनके इन्फेक्शन को थनेला रोग कहते हैं
1: जी।
2: ये बहुत ही इसके जो कारण है बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया से भी हो जाता है, वायरस से भी हो जाता है, फंगस से भी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे कटड़े और बछड़े होते हैं
1: जी,
2: ये दूध पीते हुए इनको सिर मारने की आदत होती है मां के अडर पे
1: जी,
2: तो कई बार उस सिर मारने की जो उसकी आदत है उस अडर के पे उसको एक चोट पहुंचती है जिसकी वजह से उसपे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है,
1: यानी कि रक्षा सूजन हो सकती है उसमें।
2: थनेला रोग का जो सर्वप्रथम जो लक्षण है वो सूजन ही है
1: जी,
2: और थनेला रोग के दो प्रकार हैं, एक प्रकार जिसको बोलते हैं क्लिनिकल फॉर्म ऑफ मेस्टाइटिस जो आपको दिख जाएगा
1: जी,
2: जैसे किसान भाई बताएंगे कि इसकी जो बाकटी है जो अडर है वो बहुत ही ज्यादा सूज गया है, थन बड़े बड़े हो गए हैं, दूध निकालते हुए लात मारती है, इसको दर्द महसूस होता है, दूध पीले रंग का हो गया है, दूध अगर हम स्वाद में देखेंगे तो चरचरा हो जाता है, तो ये जो लक्षण है ये किसान भाई सभी देखते ही पहचान जाएंगे कि आज इसके थन में इसके दूध में इन्फेक्शन है। लेकिन दूसरी जो इसकी फॉर्म है वो है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, जिसमें ये नहीं पता चलता, बाकटी भी नॉर्मल होती है, दूध भी नॉर्मल होता है, लेकिन किसान भाई क्या शिकायत करते हैं कि जो इसका दूध था वो 12 किलो से रह गया 4 किलो पे आ गया
1: जी,
2: बाकी सब तो ठीक है
1: जी।
2: तो उस जो प्रकार है थनेला रोग की उसको पहचान करना बहुत मुश्किल होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे पहचान करना मुश्किल है तो किसान भाई कैसे जानेंगे कि जो पशु है उनका दूध देने वाला, चाहे गाय हो या भैंस हो, कैसे उसके लक्षण को पहचाने ताकि किसान भाई उसका समय पर जो है ना उपचार करवा सके।
2: जो सब क्लिनिकल फॉर्म मैंने बताया है उसको पहचान करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो उसका दूध का जो उत्पादन है वो लगभग लगभग आधा रह जाएगा, और दूध में थोड़े रंग में और उसके स्वाद में आपको हमेशा फर्क महसूस होगा, और अगर आप चाहें तो उसमें आप उसका जो जो प्रयोगशाला है इनमें उसका टेस्ट हो सकता है
1: जी,
2: उस टेस्ट के माध्यम से ये पता लग जाता है कि हाँ इसको एक तरह का थनेला रोग है
1: जी। जय रक्षा, उसके लक्षण का जिक्र कर रहे हैं कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। एक तो आपने जिक्र किया कि जो दूध है उसकी मात्रा कम हो सकती है, या और कोई अन्य कारण, जैसे बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे थे कि कोई पशु है उसमें दूध देने वाला, उसमें कोई बैक्टीरिया आ सकता है, वो कैसे आ सकता है और किसान भाई कैसे ध्यान रखे उस बैक्टीरिया का।
2: देखिए, जो आज ये जो बरसात का मौसम चल रहा है इस समय में जो बैठने का स्थान है पशुओं का उसमें नमी बढ़ जाती है
1: जी,
2: और जो बैक्टीरिया जो अगर किसी भी थन में या दूध बनाने की ग्रंथि के अंदर जाएगा तो जमीन के माध्यम से जाएगा
1: जी बिल्कुल,
2: या बछड़े के चूंगने के माध्यम से जाएगा, दो ही माध्यम है इसको जाने के। तो अगर हम नीचे से देखें, अगर हम अपना जो उसका बैठने का ठान है, जो उसका स्थान है, हम उसको सूखा रखें, वहां पे नमी ना होने दें, वहां पे हम प्रयोग करें चूने का प्रयोग करें, तो नमी अगर वहां पे ज्यादा रहेगी तो ज्यादा चांस रहेंगे कि जो इन्फेक्शन है वो जमीन से थन के अंदर जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे थनेला रोग हुआ, थनेला रोग के बाद जो किसान भाई है कई बार देखते हैं कि घर पे इलाज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्या उचित है या उसको किसी नजदीकी हॉस्पिटल में अस्पताल में उसको ले जाना पड़ेगा पशु को?
2: नहीं नहीं, जो थनैले रोग के जो इलाज की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। अगर हम उसमें किसान भाई अगर खुद इलाज करेंगे तो उनका आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा।
1: कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब चलो भाई झाड़ा लगवा लेते हैं।
2: नहीं, ये तो मैं इसको आपके माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक करना चाहूंगा कि ये जो इन्फेक्शन है इसका इलाज आप एक किसी अच्छे पशु चिकित्सक से अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाके ही करवाएं, जिससे आपके आपके पैसे का कम से कम नुकसान हो, आपके पशु का कम से कम नुकसान हो। क्योंकि इस बीमारी में थनैला रोग में अगर सही समय पे और सही इलाज नहीं मिलता है तो जो दूध बनाने की जो उसकी क्षमता है वो परमानेंटली भी खत्म हो सकती है
1: जी।
2: तो अगर मान लो अगर हमें उसका इलाज अपने तरफ से कर रहे हैं, झाड़ फूंक में फंसे हुए हैं, तो अगर सही समय पे अगर अच्छा उपचार उसको नहीं मिलता है तो आपका दूध जो दूध देने वाला जो पशु है उसके दूध देने की क्षमता में परमानेंट लॉस हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो भ्रांतियां हैं समाज में, जो झाड़ा लगवाना सिक्का करना, ये कहीं ना कहीं बीमारी को आगे बढ़ाती हैं। आप सबसे पहले अगर आपको कोई इसी प्रकार का लक्षण अगर लगता है कि हाँ आज इसके दूध के स्वाद में, दूध की मात्रा में, थनों में सूजन है, या ऊपर जो बाकटी अडर है उसमें अगर किसी प्रकार की सूजन महसूस हो रही है, पशु बार बार पैर उठा रहा है, खाने में अगर उसकी कमी हो गई है, आपको उसमें लगता है इसमें थनैला रोग में बुखार भी आता है जानवर को
1: जी,
2: तो किसान भाई को पता लग जाता है जब उसका जानवर उसका पूरे तरीके से चारा नहीं खाता है तो किसान भाई को देखते ही पता लग जाता है कि हाँ आज मेरे पशु के साथ कुछ ना कुछ गंभीर समस्या है
1: जी।
2: तो अगर आप ऐसी चीज कोई भी नोट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके एक अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसको अपनी समस्या बताएं।
1: डॉक्टर साहब जैसे इलाज कैसे संभव हो सकता है कि किसी पशु में, अगर बाय चांस भी हो सकता है ये, जैसे देखते हैं कि जो थनैला रोग है कई बार ये देखते हैं कि उसको जो किसान है उसको पता ही नहीं चलता है कि हमारे उसमें पशु में थनैला रोग आ गया, और कोई जैसे क्या और विशेषता हो सकती है कि उसके पशु को
2: जैसे
1: पता
2: अगर किसी पशु को थनैला रोग है तो किसान भाई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको पता लग जाएगा किसी भी दूध देने वाले पशु की जो उसकी उपयोगिता है उसके दूध देने से ही है। और इसमें दूध देने की जो क्षमता है और जो दूध देगा, जितना भी दूध आएगा आप उसको उपयोग में नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो दूध का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है, पीने में उसका टेस्ट जो है वो खारा खारा हो जाता है, जैसे ही आप दूध गर्म करोगे दूध फट जाएगा
1: जी।
2: तो इसको नजरअंदाज किसान भाई को देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ इस मेरे पशु में थनैला रोग है।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे वो उसको पागल पशु को थनैला रोग हो जाता है तो खाने पीने का क्या ध्यान रखें उसके लिए?
2: अगर मैनेजमेंट के लेवल की अगर हम बात करें किसान थनैला रोग, तो अगर पशु उसके पास ज्यादा है
1: जी
2: तो सबसे पहले जो उसके जो स्वस्थ पशु हैं वो उनका दूध निकाले
1: जी।
2: जो बीमार पशु है, जिस पशु को थनैला है, उस पशु को सबसे अंत में उसका दूध निकाले
1: जी।
2: दूसरी जो है कि आप दूध निकालने का जो वातावरण है वो साफ सुथरा रखें, मक्खी मच्छर वहां पे ना रहें, नीचे जो ठान है वो सूखा हो। और जो हर पशु पे आप दूध निकालने जाते हैं, जैसे एक भैंस का निकाल दिया दूसरी भैंस के, अगर आप दूध निकाल जाएंगे तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ करें। और जो दूध निकालने की जो विधि है, ज्यादातर दूध निकालने की विधि वो है अंगूठा लगा के दूध निकालने की विधि
1: जी बिल्कुल।
2: तो उससे क्या होता है कि दूध जल्दी तो निकल जाता है लेकिन उससे थन के अंदर और अडर के अंदर परमानेंट चोट पहुंचने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से थनैला हो जाता है,
1: यानी कोई उसके अंदर कोई गांठ वगैरह हो जाती है।
2: जैसे अंगूठा दबा के दूध निकालने की जो हरियाणा में विधि है
1: जिससे
2: दूध जल्दी निकलता है, लेकिन वो एक उत्तम विधि नहीं है दूध निकालने की
1: जी।
2: तो दूध निकालने के लिए आप अपनी आदत बदलें, दूध निकालने के लिए आप पूरे हाथ से दूध निकालने की विधि जो है, पूरे हाथ से दूध निकालने की विधि है उसको अपनाएं। उससे क्या है आपका पशु को भी दर्द नहीं होगा और थनैला होने के जो चांस है वो भी कम हो जाएंगे
1: जी। तो डॉक्टर साहब क्या जो भैंस जिसको थनैला रोग हुआ है क्या उस दूध का हम उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए, या जैसे कई बार देखते हैं चलो वो इसके दूध को जमा दे लस्सी बना ले, क्या उसके लिए उचित है ये दूध?
2: नहीं नहीं, दूध जिस थनैला जिस पशु को हुआ है उसका दूध मानव उपयोग के लिए नहीं उचित है। और वो अगर कोई मानव उसका कोई आदमी उसका अगर उपयोग करता है, घर में छोटे बच्चे अगर उसका उपयोग करते हैं तो गले का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, दस्त जैसी गंभीर बीमारियां उनको होने के पूरे पूरे आसार हैं।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे अब बारिश का मौसम भी चला हुआ है, बारिश के मौसम में ऐसे जो है ना पशु का किस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे?
2: तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो नया ताजा ब्याह हुआ जो पशु है उसमें जो कटड़े और बछड़े जब दूध पावसने के लिए उसको जब छोड़ते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: तो ध्यान रखें कि उसके सिर मारने की जो उसकी आदत है उस पे किसान भाई खड़ा रहे वहां पे, उसको सिर ना मारने दे। दूसरी जो है कि जो नीचे जो बैठने का जो पशु का स्थान है, आजकल लगभग सभी घर पक्के हो गए हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: तो पक्के होने की वजह से क्या है, कंक्रीट के फ्लोर पे, कंक्रीट के फर्श पे जब पशु बैठता है तो पशु का पूरा वजन और फर्श के बीच में जो थन आ जाते हैं उन पे आ जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: अभी आप सुन रहे थे थनेला रोग के लक्षण और बचाव, विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमित कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता। इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सब बण भैया नायर साले भाई की राम राम। कार्यक्रम ग्राम संसार और भाई इसमें जो है ना कई बार देखा है कि भाइयों के जो मनोरंजन है उसने भी करावा है और इसके गिले गिले भाई जो भी जानकारी आवा है उसको भी साझा कर दे रहे हैं। पर भाई इन सारी बातों ने लेकर जो है ना बाला का पहला करावेंगे भाइयों का मनोरंजन। भाई मनोरंजन क्योंकि भाई जो है मनोरंजन के साथ साथ जो है ना जानकारी भी साझा करेंगे। तो भाई पहला ले लें थोड़ा सा अंतराल।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: यह संदेश आकाशवाणी व यूनेस्को के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
5: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है।
0: और भाई ईव कराओगे भाइयों का मनोरंजन, तो पहला सुन लिया ये रागनी।

0: और भाई है ना, ये तो सुनी राग ने गायक कलाकार थे ज्ञानी राम। और भाई एक जानकारी दे दें, जानकारी के भाई आज जो है ना 29 तारीख है और इस दिन जो है ना भाई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इस विषय ने लेकर भाई चर्चा करेंगे। भाई पहला ले लें थोड़ा सा अंतराल।
1: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
0: और भाई चर्चा कर लें, क्योंकि भाई आज जो है ना संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। और भाई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल 29 मई को सारी दुनिया में मनाया जा है। और भाई इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र है उनके शांति अभियानों में दुनिया भर के जो सैन्य हैं और पुलिस है कर्मी और उनकी जो व्यावसायिकता, समर्पण और साहस को सम्मान देना और भाई शांति के लिए अपने जो प्राण हैं उनकी आहुति देने वाले जो शहीद हैं, शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना भी है। इसका भाई ये उद्देश्य भी है, क्योंकि भाई देखो कोई भी देश है उसकी सुरक्षा जो है ना हमारे जो वीर सैनिक है वही करा है। क्योंकि भाई हम तो जो है ना अपने अपने घर में शांति ते सोवा है, सारे काम आम राम ते करा है, पर भाई जो सीमा के प्रहरी हैं भाई देखो दिन रात वो देश की सेवा करते रहे। और इसका इतिहास का जिक्र करें तो भाई इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2002 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना करी गई थी। और भाई जो इसकी तारीख है ये 29 मई, इसको जो चुना गया था वो 29 मई 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र का जो पहला शांति मिशन शुरू हुआ था उसने लेकर यह तारीख निश्चित करी गई थी। और उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि भी देना है जिन्होंने अत्यधिक जोखिम वाली जो स्थितियां हैं उनमें शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अपने प्राणों की आहुति दी और भाई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और भाई देश का योगदान के रहा, क्योंकि भाई जो भारत है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है। क्योंकि भाई भारत ने भी अब तक कई देशों में शांति स्थापित करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कराया। और भाई इस दिन भारतीय सेना और सरकार द्वारा भी अपने वीर सैनिकों और शांति की खातिर शहीद हुए जवानों को याद किया जावा है। और इस महत्वपूर्ण दिवस और इसके आयोजनों से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए भाई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा है। क्योंकि भाई इसका जब आरंभ का जिक्र करें तो वो 1948 में कराया गया था और अपने पहले ही मिशन 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्तों पर लाने में मदद करती है। इसमें दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC या भाई कई क्रम महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक प्राय ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जा है, क्योंकि ये हल्के नीले बैरेट या भाई हेलमेट पहनते हैं। सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और नागरिक कर्मियों को शामिल कराया जा है। सदस्य राज्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर शांति सेना का योगदान दिया जाता है। शांति अभियानों के नागरिक कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक हैं।

0: जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती और तैनात किया जाता है, और भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। नवंबर 2021 तक भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और पांचवां सबसे बड़ा पुलिस योगदान देने वाला देश है। वर्ष 1948 से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से 49 में 2,00,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। भारत में महिलाओं को यूएन शांति मिशन में भेजने की लंबी परंपरा रही। वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। शांति अभियानों के हिस्से के रूप में कई देशों में अपनी उपस्थिति के बावजूद भारत ने श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुख्यालय वाले एक समान मिशन पर नियमित रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह में की स्थापना जनवरी 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिए की गई है। भारत ने दोहराया कि जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने और नियंत्रण रेखा की स्थापना के बाद मिशन ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। तो भाई, ये तो हमने भाइयों के साथ चर्चा करी कि भाई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और एक जानकारी दे दें, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर भी भाई, महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर की जयंती हर वर्ष 28 मई को मनाई जाए है, और उनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले वे पहले इतिहासकारों में से एक थे। उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल, जिसने काला पानी कहते हैं, में कठोर यातनाएं सही। वे एक महान लेखक और कवि भी थे, जिन्होंने हिंदुत्व जैसे विचारों को आकार दिया। तो इस तरह भाई जो है ना, वीर सावरकर ने देश प्रेम और 1857 की कह भाई जो क्रांति है उसमें अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापिस लौटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए और इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, इस तरह के भाई तत्व थे। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरे थे। तो ये तो भाई हमने जानकारी दी भाइयों को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पे। और भाई ईव करेंगे मनोरंजन, और उससे पहले भाई ले लें थोड़ा सा अंतराल।
1: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।

और भाई इसी लोकगीत के गिल्ला ही कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न हो रहा है। सले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।
1: मुझे क्या हुआ है

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: अब आइए सुनते हैं फिल्म रंगीला का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए आसिफ अली को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: आइए अब सुनते हैं गुलाम अली को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी सफर विषय पर। आज 29 मई है और आज ही के दिन यानी 29 मई 1972 को हमारा एक ऐसा सिने सितारा हमें छोड़कर चला गया था जिसे हम जानते हैं पृथ्वीराज कपूर के नाम से। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिन देखे। जी हाँ, जो 1932 में फिल्म आई थी आलम आरा, जो पहली बोलती फिल्म हमारे हिंदुस्तान की कही जाती है, उसमें भी पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय किया था। और उसके बाद इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त इनकी फिल्मों की है और उनको देखकर लोगों ने एक्टिंग करना सीखा। उनके बारे में हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। अब हम कार्यक्रम को बढ़ा लेते हैं आगे उनकी फिल्म सिकंदर आजम के इस गीत के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: तो हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर के बारे में। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को हुआ था और हिंदी सिनेमा जगत और भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में ये गिने जाते हैं। पृथ्वीराज ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना करियर शुरू किया, यानी जब फिल्मों में आवाज़ नहीं होती थी, उस दौर के ये कलाकार रहे। उन्हें भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का गौरव भी हासिल है। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था और इन्हीं से कपूर खानदान की शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में होती है। यानी इनके खानदान में जितने भी बच्चे हुए, लगभग सभी हम कह सकते हैं कि फिल्मों में हीरो और हीरोइन के रूप में इन्होंने काम किया। पृथ्वीराज कपूर ने पेशावर, जो अब पाकिस्तान में, के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1 साल तक कानून की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसके बाद उनका जो है थिएटर की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1928 में उनका मुंबई में आगमन हुआ और कुछ एक मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इनके जो संवाद जब सुनने को मिलते थे तो हम कह सकते हैं कि कमाल हो जाता था। दर्शक उनके हर संवाद पर तालियां बजाते थे, इतनी अदायगी उनकी इतनी सटीक होती थी, उनका जो उच्चारण है वो इतना सुदृढ़ और सदा हुआ होता था कि लोग जब उनको पर्दे पर देखते थे और उनकी आवाज़ कानों में पड़ती थी तो जो दर्शक हैं वो आनंद के रस में भीग जाते थे। अब दोस्तों कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, लेकिन उससे पहले उनकी आवाज़ में ये संवाद हम आपको ज़रूर सुनवाना चाहेंगे।
4: ये क्या है?
5: सूबे अजमेर के बंदोबस्त कागजात महाबली के हुजूर।
4: हमारे हुजूर में?
5: जी हाँ।
4: क्या राजा मान सिंह को मालूम नहीं कि हम अजमेर के सूबा वली अहद सल्तनत को अता कर चुके?
5: मालूम है महाबली।
4: फिर ये कागजात?
5: मजबूरन यहाँ लाया हूँ। अगर अब इन पर हुक्म जारी न किया गया तो सूबे में बदअमनी फैल जाने का अंदेशा है।
4: नौबत यहाँ तक पहुंच गई और आपने शहजादे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया?
5: शहजादे के सामने कागजात कई बार पेश किए जा चुके हैं, लेकिन
4: लेकिन क्या मान सिंह?
5: मैं शहजादे की लापरवाही का सबब मालूम नहीं कर सका।
4: मगर हम मालूम करेंगे। दुर्जन जाओ और सूबे अजमेर के हाकिम को हमारा पैगाम दो कि इन कागजात पर फौरन अहकाम जारी किए जाएं और उससे कहो कि हम इस कोताही और लापरवाही का सबब मालूम करना चाहते हैं।
6: साहिब आलम, मैं महाबली की आंखों में शोले देखकर आ रहा हूं। अब ये खतरनाक खेल खत्म कीजिए वरना दुनिया वालों की जबान पर आपके ये अफसाने आने लगेंगे।
3: अब आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम का यह गीत।

श्रोताओ, हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर जी के बारे में। उनका जो मुंबई में संघर्ष का जो समय चला, यानी वे अपनी बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर 1928 में मुंबई आए थे। तब मुंबई का जो नाम है वो बॉम्बे हुआ करता था, और उन्होंने वहाँ पर इम्पीरियल फिल्म स्टूडियो के गार्ड की मदद से फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में शुरुआत की थी। यानी मूक फिल्मों से लेकर आप टॉकीज तक आए, टॉकीज का मतलब कि बोलने वाली जो फिल्में हैं वहाँ तक आए। मूक फिल्मों से शुरू हुआ उनका जो करियर है वो बोलती फिल्मों तक चला, और उन्होंने 1944 में आधुनिक नाटकों को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। उनके नाटकों में सामाजिक जागरूकता और आदर्शवाद का गहरा संदेश होता था। वे चाहते थे कि उनके जो नाटक हैं, उनके जो संदेश हैं, वो एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिस पर हम हर भारतीय गर्व कर सकें, वो भारतीय समाज का एक आदर्श लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें। इसलिए वे आम जन के लिए जो नाटक है वो पेश किया करते थे, और उनके हिसाब से उनके जो संवाद हैं वो लिखे जाते थे। यानी जो देखने वाला होता था, दर्शकों को ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन की ही कोई घटना वो मंच पर मंचित हो रही है। अब आइए कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म आनंद मठ का ये गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर के फिल्मी सफर के बारे में और उनकी जिंदगी की एक अहम फिल्म जो 1960 में रिलीज हुई थी, मुगले आजम। उससे पहले उन्होंने सिकंदर फिल्म में भी काम किया था जो 1941 में रिलीज हुई, और फिल्म मुगले आजम में जिसमें उन्होंने सम्राट अकबर की भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को मील का पत्थर माना जाता है। इतना सशक्त अभिनय उस फिल्म में इन्होंने किया था कि लोग सोचने लगे कि वास्तव में अकबर ऐसा ही दिखता होगा और इसी तरह से बोलता होगा। यानी अकबर की जो भूमिका है उसको जीवंत कर दिया था पृथ्वीराज कपूर जी ने। और एक और ख़ास बात हम आपको बता दें कि ये फिल्म जिसमें इतना बड़ा तामझाम, इतनी साजो सज्जा दिखाई गई थी, इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए उन्होंने महज 1 रुपया फीस ली थी। 1 रुपये में इतनी सशक्त इन्होंने अभिनय इस फिल्म के लिए किया था। और इनके साथ जो दिलीप कुमार साहब थे तो उन दोनों की जो भूमिकाएं हैं, दोनों को मिलाकर जो दृश्य उपस्थित होता था वो देखने लायक होता था। और अगर हम बात करें इनकी विरासत की तो कपूर ख़ानदान, जिसमें राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और उनकी जो बाद की पीढ़ियाँ हैं, उनकी सिनेमा की मुख्य धारा में लाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। यानी आपको देखकर ही आपके जो परिवार के जो सदस्य थे वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए, नाम कमाया और अपनी पहचान छोड़ी। अब आइए कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और फिल्म हीर रांझा का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओ, हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर साहब के बारे में, और हम आपको बता दें कि जो पृथ्वीराज कपूर थे, भारतीय सिनेमा जगत में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान बनाकर लंबे समय से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराने वाले कपूर खानदान के शुरुआती कलाकारों के रूप में इनको जाना जाता है। कपूर फैमिली आज भी बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय है, और जब सिनेमा में बोलती फिल्मों का प्रचलन नहीं हुआ था, तब से कपूर खानदान जो है सिनेमा जगत का हिस्सा बना हुआ है और आज तक ये चल रहा है। और अगर हम बात करें तो 9 से भी ज्यादा दशकों तक कपूर परिवार ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में वक्त गुजारा है, और अभी भी ये जो सफर है वो जारी है। 1928 से अब तक ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब कपूर फैमिली से कोई ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में ना रहा हो। साल दर साल इस परिवार ने सिनेमा जगत को बेहतरीन फिल्में दी हैं, और इस परिवार की पहली पीढ़ी के अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब थे, जो पाकिस्तान के पंजाब से कभी मुंबई फिल्मों में किस्मत आजमाने आए थे, और मुंबई की ही जो किस्मत उन्होंने बदल कर रख दी। अगर इनकी संघर्ष का दौर हम देखें तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब वो महज 3 साल की उम्र के थे तो उस दौरान पृथ्वीराज कपूर ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। अभिनेता के लिए वो जो दौर है बेहद मुश्किलों भरा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर कई सालों बाद पृथ्वीराज कपूर ने ही कपूर खानदान को जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई, और फिल्मों के साथ साथ जो थिएटर करने वाले ये ऐसे अभिनेता थे जिनकी जो एक्टिंग थी, जिनका अभिनय था, वो मंच पर भी उतना ही सशक्त होता था जितना कि पर्दे पर। अब आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं हम आगे, और सुनते हैं फिल्म गजल का एक ये गीत।

फिल्मों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो सम्मान है उससे इनको सम्मानित किया था। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान

0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

किसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको, 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज़ के ज़रिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में

0: कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने

0: या करवाया, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
1: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
0: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आप बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहाँ लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है जो जिंदगी भर याद रहे।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011

में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

आज का चांदनी रात कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज की इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे जिनकी फरमाइश आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं फिल्म रजिया सुल्ताना का ये गीत जिसके लिए हमारे पास फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर बरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत। छोटा बाजार थानेसर कुरुक्षेत्र से श्याम शर्मा मिली शर्मा चिराग शर्मा राघव शर्मा तनुज शर्मा पलक शर्मा और मास्टर उद्देश्य। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी रसीद वारसी सुहेल हसन अब्बासी अनब अब्बासी अशफ अब्बासी सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। बूंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी इस गीत को सुनना चाहते हैं और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघाट चंद्रकला पोपलघाट और देवीदास पोपलघाट। ये संदेश हमारे पास आया है पांडरक कबड़ा से अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री बुरांडे और धनुश्री बुरांडे बल्लार शाह से सूरज प्राची और एकलव्य। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे महबूब से, और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है। मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर ने आपके साथ हैं। भावी नीम गांव महाराष्ट्र से श्री राम गोंदली, उषा गोंदली, पूनम वैष्णवी और युवराज गोंदली। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और उनके परिवार के सभी सदस्य। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और उनके परिवार के सभी सदस्य। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस से महुनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
5: तो आप सभी की पसंद पर फिल्म मेरे महबूब का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, फिल्म कारवां का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है शेरवानी स्कूल गजंदवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबला अंसारी और आलिया अंसारी। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और उनके साथी। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनबाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चनाताई गोड़ा ने, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोड़ा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कारवां का ये गीत, तो आइए सुनते हैं।

0: Monica!
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा का। आप हैं खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और आप हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जंदाड़े। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशन जनागल, अंकुल जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत।

शतो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से। जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। गांव कुम्हारेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है लाल माता सुदामा नगर रखलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागड़ी, प्रभुलाल बागड़ी, मन भावन, शोभा कपिल, नैना सत्यनारायण और फुंदरी भाई बागड़ी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सहना शर्मा और निवान शर्मा। गांव चोटाला से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हसीना मान जाएगी का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इजाजत से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सअप संदेश आया है, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पार्शमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखीलाल वर्मा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। रोहिदास से चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया सकपाल, साईराज सकपाल और विशाल सकपाल का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। और ये संदेश है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कालपी वाले, कमरू निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। लाल गिरी गोस्वामी हेमलता, हिना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। मोहल्ला शेरकोट बिजनौर हलवाइन से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इजाजत का ये गीत।

0: कभी कभी तो लगता है ये छोटे छोटे से साथ ही खूबसूरत हैं।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नई उम्र की फसल से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये संदेश आया है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। और ये संदेश हमारे पास से ये पहुंचा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारे और शशांक। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी, रंचू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, बीकेपुरी और विनोदपुरी। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नई उम्र की फसल का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दहलीज से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत जादी यादव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का यह संदेश हमारे पास आया है। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। मुक्कम पोस्ट फुल चिचौली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और समस्त मुलानी परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया का संदेश हमारे पास पहुंचा है। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है जमशेदपुर झारखंड सिपाही गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी। बीड शहर से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टौल और पीबी कुल थे। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दहलीज का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।